बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

जिंदगी अगर सिर्फ काम की हो तो थोड़ी सी मुस्कुराहट कहां से आए। इसलिए कुछ पल निकालिए अपने लिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है बातों हंसी दिलचस्प किस्सों का। जी नहीं, सिर्फ किस्सों की बातें नहीं होगी, बल्कि आपकी हमारी जिंदगियों की बातें भी होंगी, और इन्हीं सबके साथ मनोरंजन की ऐसी महफिल जहां बातों का सिलसिला थमेगा नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ समय तक होंगे मजेदार किस्से, रोचक जानकारियां और बीच बीच में आपके पसंदीदा गीत। मैं हूं देवजानी और आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप गपशप। आपने ट्यून किया है 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। 10:07:15। आप सभी जानते हैं कि आज मन की बात का दिन है, तो आज ये कार्यक्रम 11 बजे तक नहीं बल्कि उससे कुछ मिनट पहले ही रैप अप करना पड़ेगा हमें। तो हमारे साथ रहिए, बातों और गीतों का सिलसिला जारी रहेगा।

10:17:05 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक पर आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप गपशप। मैं हुदेव जानी आप सभी सुनने वालों के साथ। और अब आइए जानते हैं कोलकाता और आसपास के मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान शहर में आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रहने की संभावना है। बीच बीच में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री और न्यूनतम 28.1 डिग्री दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 61 से 94% के बीच रहा। इस दौरान बारिश लगभग 0.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मछुआरों के लिए राहत की खबर है। पश्चिम बंगाल के समुद्री तटों के लिए फिलहाल कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। फिलहाल इतना ही मौसम का हाल। मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए सुनते रहिए, हमारे साथ बने रहिए।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: एक चुटकी नुस्खे, जी हाँ जी हाँ, सुन रहे हैं आप 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक पर कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। मैं हूँ देव जानी, आप सभी सुनने वालों के साथ। और हम सभी जानते हैं कि जिंदगी की भागदौड़ में अगर छोटी छोटी बातें याद रहे तो बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है। और इसलिए नॉनस्टॉप गपशप में अब वक्त है उस सेगमेंट का जो देता है सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आसान काम के और भरोसेमंद सुझाव। तो आइए लेते हैं एक चुटकी नुस्खे, जहां छोटी सी सलाह बन सकती है आपकी बड़ी मदद। आज बात करते हैं मॉनसून में फंगल इन्फेक्शन से बचाव की, यानी कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बरसात का मौसम जितना सुहावना होता है उतना ही ये फंगल संक्रमण का खतरा भी बढ़ा देता है। नमी और पसीने के कारण त्वचा पर फंगस आसानी से पनप सकता है। ऐसे में कुछ आसान सावधानियां अपनाकर इस समस्या से बचा जा सकता है। त्वचा को हमेशा साफ और सूखा रखें। नहाने के बाद शरीर की सिलवटों और पैरों की उंगलियों के बीच की जगह अच्छी तरह सुखा लें। बारिश में भीगने या पसीने से कपड़े गीले हो जाएं तो उन्हें जल्द से जल्द बदल लें। ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि हवा का संचार बना रहे। तौलिया, मोजे और जूते किसी के साथ साझा न करें। अगर खुजली, लाल चकत्ते या गोलाकार दाने दिखाई दे त्वचा पर तो बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉयड युक्त क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। अगर

0: संक्रमण बढ़ता हुआ लगे या लंबे समय तक ठीक ना हो तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। याद रखिए, थोड़ी सी सावधानी आपको पूरे मॉनसून स्वस्थ और बेफिक्र रख सकती है। इसी के साथ एक चुटकी नुस्खे में आज बस इतना ही।
1: एक चुटकी नुस्खे।
2: Ma pizée

आज के दिन। कहते हैं समय आगे बढ़ता है लेकिन इतिहास अपने निशान हमेशा छोड़ जाता है, तो आइए आज की तारीख से जुड़े कुछ ऐसे ही खास पलों को याद करते हैं जिसे या जिन पलों को इतिहास ने याद रखा है। जानते हैं कि आज के दिन इतिहास के पन्ने में क्या क्या दर्ज हुआ था, किन महान हस्तियों का जन्म हुआ था और किन वजहों से आज का दिन इतिहास का हिस्सा बन गई। सेवनटीन सेवेंटी सिक्स में आज के ही दिन संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, यानी 28 जून 1776। 1820 में कर्नल रॉबर्ट गिबन जॉनसन ने न्यू जर्सी के एक अदालत भवन की सीढ़ियों पर टमाटर खाकर यह साबित किया कि टमाटर जहरीले नहीं होते। 1838 लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में 5 घंटे के समारोह के दौरान 19 वर्षीय महारानी विक्टोरिया का राज्याभिषेक हुआ था आज के ही दिन। श्रम दिवस को अमेरिकी संघीय कर्मचारियों के लिए अवकाश के रूप में स्थापित किया गया था। 1910 में यात्रियों को लेकर पहला हवाई जहाज जेपलिन LZ-7 डॉयचलैंड अपनी पहली उड़ान भरता है और लोअर सैक्सनी के माउंट लिम्बर्ग पर पेड़ों में फंस जाता है जिससे चालक दल का एक सदस्य घायल हो जाता है। 1919 में फ्रांस ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए जिससे प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ और राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 1926 में मर्सिडीज बेंज का गठन हुआ जब दुनिया की सबसे पुरानी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियां डीएमजी और बेंजेंसी का निलय हुआ। 2011 में क्रिस्टिन लेगार्ड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की प्रमुख चुनी जाने वाली पहली महिला बनी। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के रूप में घोषित करने के लिए मतदान किया। 2023 दक्षिण कोरियाई लोग 1 या 2 साल छोटे हो जाते हैं क्योंकि देश अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिछाने के लिए 2 पारंपरिक आयु गणना प्रणालियों को छोड़ देता है, यानी कि इससे पहले जन्म के समय 1 वर्ष की आयु मानी जाती थी जो अब नहीं माने जाने लगी, यानी कि अब जन्म के बाद 1 साल के पूरे होने पर 1 साल की आयु मानी जाने लगी। आज के ही दिन पैदा हुए थे संगीतकार रिचर्ड रॉजर्स। भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जन्म हुआ था 1921 में आज के ही दिन। आज अपना 55वें यानी 55th जन्मदिन

0: आ रहे हैं टेस्ला स्पेस एक्स के जनक इलॉन मास्क, जिनका जन्म हुआ था 1971 में।
1: आज के दिन थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

0: culture. कोलकाता एक ऐसा शहर जहां संस्कृति सिर्फ विरासत नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यहां हर दिन कहीं ना कहीं कोई संगीत संध्या सजती है, किसी मंच पर नाटक जीवंत होता है, किसी गैलरी में कला मुस्कुराती है, तो कहीं साहित्य और संस्कृति की महफिल जमती है और साथ ही साथ अनगिनत वर्कशॉप्स। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज कोलकाता की सांस्कृतिक दुनिया में क्या खास होने वाला है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। पेश है कोलकाता कल्चर, जहां मिलेगी शहर के चुनिंदा सांस्कृतिक आयोजनों और कार्यक्रमों की ताजा जानकारी। पुनीत पनिया लाइव इन कोलकाता शहर के एक ऑडिटोरियम में आज शाम स्टैंड अप कॉमेडी शो, इसके साथ ही साथ केसीसी ऑफ स्टेज सीजन 3 प्रेजेंट्स एपिसोड 4 फीचरिंग द मिलीपुत्स, ये भी आज शाम आप देख और सुन सकते हैं। साथ ही साथ शाहरुख एंड फ्रेंड्स कॉमेडी वीकेंड्स विद शाहरुख एंड फ्रेंड्स, ये इवेंट है आज शाम। और इसके साथ ही साथ अनगिनत वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और उन बड़ों के लिए जो दिल से बच्चे हैं।
1: कोलकाता कल्चर।
2: শুধু ভরসা রাখো ইন্ডিয়া পোস্টের উপর।
3: বিশদে জানতে আপনার কাছের পোস্ট অফিসে যোগাযোগ করুন বা ভিজিট করুন indiapost.gov.in।
4: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
0: और देखते ही देखते कार्यक्रम के आखिरी कगार तक पहुंच चुके हैं। बस इस आखिरी गीत के उस पार मैं आपसे लेती हूं इजाजत, आपके लिए छोड़कर जाती हूं मन की बात कार्यक्रम। सुन रहे थे आप 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक पर नॉन स्टॉप गपशप देवचानी के साथ। हमारे साथ बने रहिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया,
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैक चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैक।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं।

0: प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते। इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को

रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें।

मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है, और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती, और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हर गिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हर गिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया, और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है, और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा।

साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां

हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। यह है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे

हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा।

कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया, ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच

रविवार का दिन है और ऐसे में मन अगर इधर उधर भागना चाहता है तो भला इसमें नई बात क्या है, क्योंकि रविवार का दिन तो आखिर मन के भागने के लिए ही होता है ना। और बाकी दिनों की अगर बात करें तो वाकई में मन को हम मार कर ही रखते हैं और बस वीकेंड का ही समय होता है हमारे पास जब हम मन को थोड़ी सी आज़ादी देते हैं कि भाई मन तू भी इन दो दिनों में जहाँ चाहे वहाँ उड़ ले, जो चाहे वो कर ले। और शनिवार हो या फिर रविवार हो, वीकेंड के समय हम क्या करेंगे ना करेंगे इसकी प्लानिंग जो है वो फिर से हम सोमवार से ही करने लग जाते हैं, या फिर कुछ लोग रविवार की शाम या फिर रात से ही प्लानिंग कर लेते हैं कि अगले आने वाले वीकेंड में हम आखिर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। खैर, आज है छुट्टी का दिन और सुबह से लेकर शाम तक बहुत सी प्लानिंग आप लोगों ने कर रखी होगी कि भाई पूरे दिन आप आखिर क्या करने वाले हो क्या नहीं करने वाले। खैर, दोपहर हो चुकी है और आधा दिन गुजर चुका है छुट्टी का और कई सारे लोग ना बहुत ज़्यादा अफसोस भी करते हैं कि भाई छुट्टी का दिन बस शुरू ही हुआ था और देखते ही देखते आधा दिन गुजर गया और कितने सारी ही प्लानिंग हमने कर रखी थी लेकिन वाकई में जो प्लानिंग है उसका आधा भी हम नहीं कर पाए। खैर, मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आधा दिन अभी भी आपके पास है और जितना हो सके रविवार की शाम को अपने अनुजाय अपने मुताबिक खुशमिजाज तरीके से आप बिता सकते हैं। तो आप बाकी के समय को किस तरीके से बिताएंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर फिल्मों की बात करें तो फिल्मों की जानकारी मैं आपको दे सकती हूँ कि अगर आप फिल्मों को देखने के बारे में सोच रहे हैं, जी हाँ नई फिल्मों की ही बात कर रही हूँ, तो नई फिल्में अगर आप आज की शाम देखना चाहते हैं तो आखिर कौन सी फिल्म आप देख सकते हैं, कौन सी फिल्म आपको मनोरंजन दे सकती है और आने वाले फिल्मों के बारे में भी अपडेट दूंगी इसी कार्यक्रम में। फिलहाल 107 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम होता है 3 का तड़का और आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं आपके रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा को। इस चैनल को ट्यून किया है आपने 107 FM रेनबो, इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम में लगाते हैं तड़का कुछ गीतों का तो कुछ बातों का, क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही है तड़का जिसमें तड़का लगता है बॉलीवुड फिल्मों का। तो चलिए फिलहाल एक प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए और उसके बाद तड़के लगते ही रहेंगे इसी कार्यक्रम में, साथ रहेगा पूरा इस कार्यक्रम का शाम के 4 बजे तक। फिलहाल सोनू निगम पलक मुचल की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

जी हाँ, बॉलीवुड की नई नई फिल्मों के साथ अगर आपकी मोहब्बत हो ही गई है तो फिर इस मोहब्बत को निभाना भी ज़रूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं उन्हीं नई फिल्मों के बारे में जिसे आप आज की शाम देख सकते हैं। यानी कि भाई रविवार का दिन है और आधा दिन तो बिल्कुल गुजर चुका है, लेकिन अभी भी आधा दिन बाकी है आप सभी के पास और सोच रहे हैं कि आज की शाम आखिर क्या करें। अगर फिल्मों को देखने की बात करें तो चलिए बताऊं आपको कि आज की शाम आखिर नई नई कौन सी फिल्म है जिनका मज़ा आप ले सकते हैं। अगर आप रोमांटिक फिल्मों का मज़ा लेना चाहते हैं या फिर रोमांटिक के साथ थोड़ा सा मिर्च मसाला यानी कि एक्शन भी होना चाहिए, थ्रिलर भी होना चाहिए, तो ये सारा आनंद भी आप उठा सकते हैं आज ही की शाम। यानी कि कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें ये सारे मसाले आपको एक साथ मिलने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले वेलकम टू द जंगल इस फिल्म को लेकर अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित एक्शन कॉमेडी फिल्म जो इस हफ्ते ही रिलीज होकर सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। अगर आप एक्शन के साथ साथ कॉमेडी को देखना पसंद करते हैं तो ये जो फिल्म है आपको आज की शाम मज़ा, आनंद, एंटरटेनमेंट ये सब कुछ दे सकती है। इसके अलावा कॉकटेल टू की अगर बात करें तो शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना की ये रोमांटिक कॉमेडी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और हो सकता है कि अगर आप रोमांटिक के साथ साथ कॉमेडी देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए हो सकती है। इसके अलावा और दो फिल्में हैं जिसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो मैं वापस आऊँगा, जी हाँ मैं वापस आऊँगा, यह फिल्म का नाम इम्तियाज़ अली द्वारा निर्देशित और दिलजीत दोसांझ के अलावा शर्वरी और वेदंग रैना अभिनीत ये रोमांटिक ड्रामा भी आपको पसंद आ सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको हॉलीवुड की फिल्में देखना पसंद है और यही हॉलीवुड की फिल्म अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आज की शाम इस फिल्म को आप देख सकते हैं। लेकिन आखिर फिल्म क्या है, तो फिल्म का नाम है सुपर गर्ल, जो कि हॉलीवुड की फिल्म है। लेकिन बिल्कुल इस हॉलीवुड की फिल्म को सिनेमाघरों में आप हिंदी में डब करवा कर देख सकते हैं। यानी कि हिंदी में डब्ड ये फिल्म चल रही है सिनेमाघर में। तो आज की शाम अगर हॉलीवुड का मज़ा उठाना चाहते हैं हिंदी में तो बिल्कुल तैयार है ये फिल्म जिसका नाम है सुपर गर्ल। तो भाई आज की शाम एंटरटेनमेंट के लिए कई सारी फिल्में आपके सामने हाजिर हैं जिसमें हर तरह का मसाला आपको मिल सकता है। यानी कि अगर आप रोमांटिक खोजते हैं या फिर थ्रिलर के साथ साथ कुछ और आप चाहते हैं तो ये सारे मसाले इन सारी फिल्मों में आपको मिल जाते हैं। तो चलिए फिलहाल बातें तो बहुत हुई, लेकिन इस वक्त एक प्यारा सा गीत और उसके बाद फिर से बातें करेंगे ना आने वाली फिल्मों के बारे में और कुछ नई फिल्मों के बारे में भी जो कि फिलहाल अभी तक तैयार भी नहीं हुई है और तैयारी होने से पहले की क्या है बातें उन फिल्मों के बारे में बताऊंगी आपको। लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

0: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: रेनबो परियोजना प्रस्तुति में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। फिर एक बार हाजिर हो चुके हैं लेकर एक नई योजना और आज बात करेंगे स्वामित्व स्कीम को लेकर। ये योजना 2025-2026 तक देश के लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर करने के लिए विस्तारित की गई है और ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान कर रही है, जिससे ग्रामीण निवासियों को कानूनी स्वामित्व का अधिकार मिलता है। मुख्य बिंदुओं की अगर बात करें तो ग्रामीण घरों और भूमि का सटीक मानचित्रण करना और मालिकों को कानूनी स्वामित्व वाले प्रॉपर्टी कार्ड देना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा पंचायती राज मंत्रालय नोडल मंत्रालय है और ये 2021-2025 की रूपरेखा के साथ 2026 तक जारी है। प्रगति की अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में गांव कवर किए गए हैं, ड्रोन सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं और लाखों प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, जो दर्शाता है कि ये सक्रिय है। और लाभ की अगर बात करें तो ये ग्राम पंचायतों को बेहतर योजना बनाने और बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क या फिर स्कूल आदि के विकास में मदद करता है। संक्षेप में इस योजना के बारे में अगर कहें तो स्वामित्व योजना एक सक्रिय और चल रही योजना है जो ग्रामीण भारत में संपत्ति के अधिकारों को मजबूत कर रही है।
0: रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति परियोजना

0: सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: 107 FM रेनबो परियोजना प्रस्तुति आज यहीं तक। बात कर रहे थे स्वामित्व स्कीम को लेकर। कल फिर से इसी जगह इसी चैनल पर दोबारा हाजिर हो जाएंगे लेकर 107 FM रेनबो परियोजना प्रस्तुति और बात होगी एक नई स्कीम को लेकर। फिलहाल रुख करते हैं कार्यक्रम 3 का तड़का की ओर।
2: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं 3 का तड़का बरो 7 FM रेनबो पर 3 का तड़का 3 का तड़का 3 का तड़का बरो 7 FM रेनबो पर।

3:40 होने गए हैं। संग हैं आप शर्मिशा के और सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का। रविवार का दिन है और रविवार के आधे दिन के गुजरने के बाद अब आधे दिन का आखिर क्या होगा, कैसे गुजरेगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये सारी चिंताएं घूम रही हैं आप सभी के दिमाग में। लेकिन वैसे करने को तो बहुत कुछ है। अगर आप चाहें तो आप फिल्म देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने परिवारजनों के साथ फिल्म के अलावा एक अलग तरह की आउटिंग भी कर सकते हैं, या फिर अगर बाहर जाने का कोई भी प्लान नहीं है तो घर परिवार के लोगों के साथ आराम से बैठकर छुट्टी का आनंद भी लिया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा आज है जून महीने का, जी हाँ, एक ऐसा दिन जिसके बाद सिर्फ 2 दिन हमारे हाथ में होते हैं, यानी कि आज है जून का 28 तारीख और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के बाद फिर से एक नया दिन आने वाला है। और बॉलीवुड फिल्मों के जो दीवाने हैं, खासकर वो दीवाने जिन्हें नई नई फिल्मों का बड़ा ही शौक है, तो उनके दिलो दिमाग में फिर एक बार एक नए महीने के आने के साथ साथ एक सवाल घूमने लगेगा, या फिर मैं तो कहूँगी कि अभी से घूमना शुरू हो चुका है। भाई, एक महीना ख़त्म हुआ नहीं कि अगले महीने या फिर कौन से फिल्में हम देख सकते हैं, कौन से फिल्मों के साथ हम अपना और अपने वीकेंड को बिता सकते हैं, ये जो सवाल है ये अभी से घूमने लगा है। या फिर लोग सोच रहे हैं कि खैर आज के दिन को तो बिता लें बड़े अच्छे तरीके से, उसके बाद सोचा जाएगा कि आखिर अगले महीने हमें क्या करना है, नहीं करना है। और अगर बॉलीवुड के फिल्मों की बात करें तो ऐसे में बताया जा रहा है कि 2 फिल्में ऑलरेडी बिल्कुल तैयार हैं जो कि आपका मनोरंजन करेंगी आने वाले महीने में। और आखिर कौन सी वो फिल्में हैं, चलिए बताऊं आपको। आलिया भट्ट और शर्वरी की बहुप्रतीक्षित फिल्म अल्फा 10 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके अलावा एक और फिल्म भी मौजूद है, जी हाँ, जिसमें काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की सोशल थ्रिलर द इंडिया स्टोरी, जो कि रिलीज होगी 24 जुलाई को। और ये दोनों फिल्में बिल्कुल तैयार हैं आपके मनोरंजन के लिए, जो कि आएंगी अगले महीने। तो भाई, उदास होने वाली या फिर दिलो दिमाग में सवालों की जो फुलझड़ी है उसे ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ऑलरेडी 2 फिल्में बिल्कुल तैयार हैं आप सभी के मनोरंजन के लिए। तो आखिर फिक्र क्यों, चिंता क्यों, तो चलिए बिंदास होकर आज के दिन को तो बिताइए, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। तो चलिए, फिलहाल जो होगा सो होगा, लेकिन फिलहाल आपको सुनवाऊँ एक प्यारा सा गीत और उसके बाद तो बातें करेंगे ही ना, जी हाँ, आने वाली और भी बहुत सी फिल्मों को लेकर।

ईशा का पट्टनम को लेकर बात कर लेते हैं। ये एक 7 एपिसोड की क्राइम थ्रिलर सीरीज होने वाली है और ये सीरीज आप देख सकते हैं 2 जुलाई से, और इसे हिंदी डब के तौर पर भी देखा जा सकता है या फिर ओरिजिनल तेलुगु में भी ये उपलब्ध होने वाली है। यानी कि 2 जुलाई आप विशाखापट्टनम इस वेब सीरीज को देख पाएंगे। इसके अलावा द ईस्ट पैलेस की अगर बात करें तो दक्षिण कोरिया की पृष्ठभूमि पर आधारित ये ऐतिहासिक थ्रिलर और एक्शन ड्रामा जो है देख सकते हैं आप 17 जुलाई से। फिर एक बार हिंदी वर्जन में इसे देखा जा सकता है। और अगर वेब सीरीज़ की बात करें तो जो लोग सिनेमा घरों में ना जाकर अपने ही घर में बैठकर छुट्टी का आनंद उठाना चाहते हैं, उनके लिए हर तरीके से मनोरंजन बिल्कुल तैयार किया जा रहा है अगले महीने के लिए। तो चलिए भाई, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है और न जाने कई सारी प्लानिंग हमने कर रखी है और कुछ प्लानिंग पूरी हो चुकी है तो कुछ प्लानिंग अभी भी अधूरी है, अभी भी इंतज़ार में है कि कब उन प्लान्स को, उन सारी चीज़ों को पूरा किया जाए। लेकिन एक सच्ची बात कहूँ आपसे, हम प्लानिंग तो बहुत सी करते हैं, बहुत कुछ हम सोच कर रखते हैं कि आने वाले वीकेंड में, आने वाली छुट्टियों में हम ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये पकाएंगे, वो खाएंगे। लेकिन वाकई में एक बात है ना कि जब छुट्टी का दिन आता है तब ऐसा लगता है कि छोड़ो यार, क्या ही करना है। पूरे हफ्ते तो हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन जब छुट्टी का दिन वाकई में करीब आ जाता है या फिर छुट्टी के दिन को हम मनाना शुरू करते हैं तब ऐसा लगता है कि चलो छोड़ो, आखिर इतना कुछ करना ही किस लिए है ना, सिर्फ जितना ज़रूरत है उतना करें और उसके बाद आराम ही आराम। आखिर छुट्टी का दिन होता किस लिए है भाई, आराम करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। लेकिन कुछ लोग घूमना फिरना भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका कहना होता है कि भाई छुट्टी का दिन है तो करेंगे सिर्फ और सिर्फ आराम, और बाकी के दिन तो हम काम के लिए इधर उधर तो घूमते ही रहते हैं। लेकिन जो लोग घर पर रहते हैं उनके बारे में भी तो थोड़ा सोचना ज़रूरी है ना। तो फिर जो लोग घर पर रहते हैं उन्हें तो ऐसा लगता होगा कि भाई हम तो घर पर रहते हैं लेकिन हमें भी तो कभी कभार घूमने फिरने का मौका मिलना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, तो जो लोग घर पर रहते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा सोचा करिए, उनको लेकर भी थोड़ी सी आउटिंग किया करिए। तो चलिए, हर किसी का ख्याल रखते हुए आज के इस संडे दोपहर को आप गुजारें बहुत ही मस्ती के साथ, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, क्योंकि ये जो समय आज हमारे पास है ये कल नहीं होने वाला है। और इसीलिए तो इस समय को भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए, अच्छे तरीके से मनाइए। और फिलहाल सुनवाऊँ आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत, जो कि हो सकता है कि आपका दिल जो है वो जीत ले। तो फिलहाल शान और पलक मुछल की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का।

प्यार भरे पलों को आप गुजारते रहिए, लेकिन इसी के साथ कहना होगा कि आज के इस कार्यक्रम को करते हैं हम यहीं पर समाप्त, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी जो है वो बता रही है कि आज 3 का तड़का में तड़का लगाने का जो समय है बस यहीं तक का, और उसके बाद सुनेंगे आप अगले कार्यक्रम। जी हाँ, इसी जगह इसी चैनल पर दोबारा हाजिर हो जाऊंगी मैं, लेकर आऊंगी कार्यक्रम छायालोक, और समय रहेगा 7:02। तब तक के लिए ट्यून रहेगा 107 FM रेनबो के साथ, और इसके अलावा फिर एक बार अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो ट्यून करना है आपने 100.1 FM गोल्ड, और लेकर आऊंगी आप सभी के लिए शाम का कार्यक्रम चायन क्लासिक, समय रहेगा 5:15। तब तक के लिए ट्यून रहेगा 107 FM रेनबो के साथ, और सुनते रहिए इस कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत। इस गीत को सुनते सुनते शर्मिष्ठा लेती ही इजाजत आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

7:10 होने को है स्टूडियो की घड़ी में। इस वक्त आप हसन शर्मिशा गैर सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम चायलोक, और रविवार की शाम है तो हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ बहुत खास, कुछ अलग, कुछ हटके। जी हाँ, और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आप ने ट्यून किया 107 FM ब्रेन वो चैनल, इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे

प्रसन्न इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। और बता दूं कि इस कार्यक्रम को यानी कि ये छायालोक कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑफिशियल ऐप पर जिसका नाम है न्यूज ऑन एयर। और जैसे कि मैं बता रही थी कि भाई रविवार की शाम है। जी हाँ, मुझे पता है कि आप सभी को पता है कि आज है रविवार और रविवार की शाम तक हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज की जो म्यूज़िकल जर्नी थी उसमें मैं और आप हम दोनों साथ थे। और म्यूज़िकल जर्नी की जो जर्नी है उसे करते करते हम पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम तक, यानी कि छायालोक के अंतर्गत। आज है रविवार, तो रविवार छायालोक के अंतर्गत बातें होती हैं टॉपिक यादों की बारात को लेकर, यानी कि इस कार्यक्रम में बातें होती हैं कुछ पुराने फिल्मी कहानियों को लेकर, तो कुछ नई फिल्मी गपशप भी जोड़ देते हैं हम इसी कार्यक्रम में। तो चलिए सिलसिला बातों का जी हाँ जारी रहेगा इसी कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए। फिर एक बार कुमार शानू और इस बार अलका याग्निक की आवाज़ में सुनिए ये गीत

0: 7:16 है छुट्टी की घड़ी का समय। संघ आप शर्मिष्ठा के सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक के अंतर्गत यादों की बारात। और आज के इस कार्यक्रम में बातें होंगी ढेर सारी जो कि जुड़ी होंगी पुराने फिल्मी गीतों के साथ, फिल्मी कहानियों के साथ, साथ ही साथ नए फिल्मों को लेकर भी जिक्र करूंगी इसी कार्यक्रम में। तो चलिए इस वक्त बात करना चाहूंगी एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि रिलीज तो हुई थी 1980 में। खैर रिलीज जब भी हुई हो, जी हाँ जिस वक्त भी हुई हो, लेकिन खास बात यह है कि जिस वक्त ये फिल्म रिलीज हुई थी, रिलीज के समय इस फिल्म को फ्लॉप करार कर दिया गया था, यानी कि बिल्कुल फ्लॉप बताया गया था इस फिल्म को। किसी वजह से, फिल्म की कहानी हो या फिर म्यूजिक हो या फिर बैकग्राउंड सीन आप कह सकते हैं, कुछ भी लोगों को शायद पसंद नहीं आया होगा और इसीलिए उस वक्त रिलीज के समय फिल्म को फ्लॉप बताया गया था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और इस फिल्म को दर्शक मिलने शुरू हुए, गाने पसंद आने शुरू हुए, फिल्म की कहानी लोगों के दिलों को छूनी शुरू हो गई। और उसके बाद क्या था, उसके बाद आज तक इस फिल्म को, इस फिल्म के हर एक गाने को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे और आज भी लोगों के दिलो दिमाग में फिल्म के हर एक गाने शामिल है। आखिर बात कर रही हूँ किस फिल्म के बारे में, उस फिल्म के पीछे के सक्सेस की आखिर कहानी क्या है, बात करूंगी सारी। लेकिन फिलहाल सुनवाऊँ आपको किशोर कुमार आशा भोंसले की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गीत।
1: प्यार की किसी ने जान ली, किसी ने जान

कर्ज फिल्म से सुन रहे थे आप इस गीत को, गायक कलाकार किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज में, और फिल्म को रिलीज किया गया था साल 1980 में। और इस फिल्म से जुड़े दुख भरी बात ये थी कि जिस वक्त इस फिल्म को रिलीज किया गया था, फ्लॉप साबित हुई थी वो फिल्म, लेकिन आज के दिन इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई जो कहानी है वो बिल्कुल अलग है। ऋषि कपूर और टीना मोनेम स्टारर बॉलीवुड की कर्ट क्लासिक फिल्म कर्ज ने अपनी रिलीज के 40 साल पूरे कर लिए हैं। 27 जून 1980 को रिलीज हुई इस फिल्म के शानदार सफर पर डायरेक्टर सुभाष घई ने सोशल मीडिया पर कुछ यादें शेयर की हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि आज ग्रैंड म्यूजिकल कल्ट कही जाने वाली उनकी ये फिल्म रिलीज के वक्त बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई थी। बॉलीवुड के लेजेंड एक्टर्स में से एक ऋषि कपूर की फिल्म कर्ज को कल्ट क्लासिक का दर्जा दिया जाता है। शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर कमजोर साबित हुई इस फिल्म को बाद में दर्शक

मिलने शुरू हुए और आज भी बॉलीवुड फैंस में से एक खास दर्जा वे देते हैं और आज इस फिल्म को लेकर कहानी कुछ अलग है, कुछ खास है। सुभाष घई ने सोशल मीडिया पर कर्ज के 46 साल पूरे होने का जश्न मनाने की एक तस्वीर, फिल्म के सेट की एक बिहाइंड द सीन फोटो और फिल्म का पोस्टर शेयर किया है। पोस्ट शेयर करते हुए सुभाष घई ने अपने दिल की बात भी साझा की है और कहते हैं कि आज लोग इसे ग्रैंड म्यूजिकल शो कहते हैं, लेकिन 27 जून 1980 को रिलीज के वक्त इसे फ्लॉप साबित कर दिया गया था और इस बात से, इस फिल्म से जुड़े हर इंसान के दिल में क्या बीती होगी, खैर ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। आखिर कितने मेहनत और मशक्कत लगती है एक कामयाब फिल्म को बनाने के पीछे, और जब रिजल्ट हमें ये मिलता है कि रिलीज़ के समय फिल्म जो है दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, चाहे कारण कुछ भी रहे, लेकिन फ्लॉप साबित हुई, नाकामयाब साबित हुई फिल्म, और इस बात के साथ आखिर दिल बिल्कुल भी मान नहीं पाता है, लेकिन आखिरकार कहानी कुछ अलग बनी। कर्ज 1980 को रिलीज हुई थी और फिल्म का डायरेक्शन और प्रोडक्शन सुभाष घई ने अपनी कंपनी मुक्ता आर्ट्स के बैनर तले किया था। फिल्म में ऋषि कपूर, टीना मुनीम, सिमी ग्रेवाल, राज किरण, प्रेमनाथ, प्राण और दुर्गा खोटे अहम भूमिकाओं में नजर आए थे। कर्ज की कहानी और एक्टिंग के साथ साथ इसका म्यूजिक भी इंडियन सिनेमा में आइकॉनिक हो चुका है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म का म्यूजिक दिया था जबकि गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे। ओम शांति ओम एक हसीना थी, दर्द दिल दर्द जिगर, मैं 16 बरस की, इसके अलावा पैसा ओ पैसा जैसे गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। कर्ज में मोंटी का लीड किरदार निभाने वाले ऋषि कपूर आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन ऐसे में, जी हाँ, ऐसे समय में जब वे ये खुशी बांटते सभी के साथ, तब वाकई में उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगता कि ये फिल्म जिसमें उन्होंने लीड रोल के तौर पर एक्टिंग की थी आखिर आज भी लोगों के दिलों को छू रही है। और शायद ऐसा ही होता है ना, कई बार हमें सफलता जो है वो संग संग नहीं मिलती। जी हाँ, हम मेहनत तो बहुत करते हैं किसी चीज़ को सफल करने के लिए, लेकिन ये भी आशा करते हैं कि मेहनत तो हमने की, काम तो हमने बहुत किया, दिन रात हमने परिश्रम तो की, लेकिन सफलता जो है वो हमें संग संग नहीं मिली। लेकिन इंतज़ार, धैर्य, इसे नहीं छोड़ना चाहिए, यही हमें ये बात सिखाती है कि धैर्य का साथ हमें नहीं छोड़ना है और काम हम अपना करते चले, लेकिन कभी कभार हमारा भी दिन आएगा और खुशियां जो है वो हमारा दामन छू लेगी। और चलिए, खुशी की बात अगर कहें तो वाकई में शाम का समय है, छुट्टी का दिन है और खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती है जब बरसात के मौसम में ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि छुट्टी का दिन, शाम का वक्त और साथ में रिमझिम बारिश। तो चलिए, बारिश का साथ रहेगा हमारे साथ और कार्यक्रम का साथ भी बना रहेगा। तो फिलहाल सुनवाऊँ आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और इसी के साथ बातें होंगी और भी बहुत सी फिल्मों को लेकर।

7:42 यादों की बारात में चलिए अब बात कर लेते हैं एक ऐसे फिल्म को लेकर जिसके रिलीज में अभी बहुत ज्यादा वक्त है। जी हाँ, जैसा कि पुराने फिल्मों को लेकर हम बात करते हैं इसी कार्यक्रम में, साथ ही साथ नई फिल्मों को लेकर भी गपशप की जाती है इसी कार्यक्रम में। तो चलिए एक ऐसे फिल्म को लेकर जिक्र करूंगी जो कि अभी भी तैयार हो रही है और आने में, जी हाँ, रिलीज होने में अभी काफी सारा समय है। बॉलीवुड सिनेमा प्रेमियों के लिए सितंबर का महीना बेहद ही रोमांचक होने वाला है क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। डायरेक्टर प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म हैवान और आयुष्मान खुराना सारा अली खान की स्पाई कॉमेडी उड़ता तीर दोनों एक ही दिन यानी कि 11 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। ये मुकाबला इसलिए भी बेहद खास बताया जा रहा है क्योंकि एक तरफ जहां मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फेम अक्षय कुमार और सैफ अली खान की ब्लॉकबस्टर जोड़ी लगभग 18 साल बाद बड़े पर्दे पर फिर से वापसी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस की इस रेस में सारा अली खान अपने ही पिता सैफ अली खान के सामने चुनौती बनकर खड़ी होने वाली है। एक ही दिन रिलीज होने की वजह से हैवान का सीधा मुकाबला आयुष्मान खुराना और सारा की उड़ता तीर से होगा। फिल्मी गलियारों में इस बात की भी खूब चर्चा हो रही है कि ये पहली बार होगा जब पिता सैफ अली खान और बेटी सारा अली खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आमने सामने होने वाली है।

7:48 यादों की बारात कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और इस वक्त मैं बताना चाहूंगी बॉलीवुड के विसल किंग को लेकर। क्या आप बॉलीवुड के विसल किंग को जानते हैं, जिन्होंने तकरीबन 1600 गानों में अपनी सीटी का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया और उनमें से कई हमेशा के लिए आइकॉनिक बन गए। ये तो हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड गाने बैकग्राउंड स्कोर के बिना बिल्कुल ही अधूरे हैं, फिर चाहे वो जादुई ऑर्केस्ट्रा की धुनें हों या फिर पियानो की कोमल धुनें या फिर सीटी की आवाज़ ही क्यों ना हो। ये गाने इमोशंस का भंडार है। जी हाँ, कोई भी गाना, कोई भी फिल्मी गीत आप उठाकर देख लीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक के बिना आखिर कैसा लगता है ना। तो ऐसे ही म्यूजिक में एक म्यूजिक है विसल का, यानी कि सीटी बजाने वाला जो म्यूजिक है उसके जरिए भी कई सारे बॉलीवुड के गाने हिट हुए और आज भी उन गीतों को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बात करूंगी बॉलीवुड के विसल मैन को लेकर, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

इस कार्यक्रम के अगले गीत की ओर आगे बढ़ूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ठीक 8 बजे आप सुन सकते हैं 135वें मन के बात का प्रादेशिक प्रसारण। समय रहेगा ठीक 8 बजे का और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि मैं और आप जुड़ेंगे 8:30 पर। लेकर आऊंगी कार्यक्रम छायालोक यादों की बारात।

8:35 है शुरू घड़ी का समय और फिर एक बार शर्मिशा आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती है। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम चायलोक के अंतर्गत यादों की बारात और इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं हमारे ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर।

8:41 संगे आप शर्मिष्ठा के सुन रहे हैं कार्यक्रम झालोक के अंतर्गत यादों की बारात। और अब से थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी बॉलीवुड के जाने माने विसल मैन को लेकर। क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्म धुन से लेकर फना के सॉन्ग चांद सिफारिश में बजने वाले सीटी के पीछे कौन सा कलाकार है? वो कोई और नहीं बल्कि नागेश सुरवे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में 1600 से ज़्यादा बार सीटी बजाई है। 1600 गानों में सीटी की आवाज़ देने वाले नागेश सुरवे के कुछ सॉन्ग्स ऐसे भी हैं जो सदाबहार बन गए, और इन गानों को अपने ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, दिल तो पागल है से लेकर कुछ कुछ होता है जैसे आइकॉनिक फिल्मों के गानों में सीटी वादक ने अपनी कला को निखारा है। वही मोहब्बतें के चलते चलते धूम 2 का टाइटल सॉन्ग हो, या फिर फना के चांद सिफारिश, या फिर सत्या के सपने में मिलती है जैसे गानों में बजाई गई उनकी विसल आइकॉनिक बन गए। नागेश सुरवे ने 1975 में एक प्रोफेशनल सीटी बजाने वाले के तौर पर अपना सफर शुरू किया था। एक पिकनिक के दौरान कुछ म्यूजिशियंस ने नागेश सुरवे को मजाक मजाक में सीटी बजाते हुए सुन लिया था, और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उन्हीं म्यूजिशियंस का हाथ पकड़ते हुए उन्होंने अपना म्यूजिकल जो सफ़र है बॉलीवुड में उसकी शुरुआत की, और उसके बाद तो इतिहास ही है। जी हाँ, ऐसे बहुत से आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं जिन्हें आज भी हम गुनगुनाते हैं, और ख़ासकर विसल की आवाज़ के लिए उन गीतों को एक ख़ास दर्जा मिला, एक ख़ास खूबसूरती मिली। फिलहाल आशा भोसले, सुरेश वाडकर की आवाज़ में ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

चलते चलते हैप्पी वाले बर्थडे को लेकर चलिए कर लेते हैं बात। और आपको बताऊं कि बॉलीवुड की दुनिया में आज मना रहे हैं दो शख्स अपना हैप्पी वाला बर्थडे। सबसे पहले नाम लूंगी विशाल ददलानी का। संगीतकार विशाल ददलानी हिंदी सिनेमा जगत के बड़े संगीतकारों में से एक हैं। विशाल का जन्म आज ही के दिन 1973 में मुंबई में हुआ था। संगीतकार होने के साथ साथ विशाल एक गायक और गीतकार भी हैं। इसके अलावा एक और शख्स का नाम भी लेना चाहूँगी जिन्हें हमने बॉलीवुड की फिल्मों में भावुक पिता का रोल निभाते देखा था। बात कर रही हूँ अभिनेता राजीव वर्मा को लेकर। वे भी मनाते हैं आज ही के दिन अपना हैप्पी वाला बर्थडे। तो राजीव वर्मा एक प्रतिष्ठित जाने माने अभिनेता हैं जिन्हें विशेष रूप से हिंदी सिनेमा और टेलीविजन में उनकी भावुक पिता की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 1949 को मध्य प्रदेश में। तो इन दोनों कलाकारों को अपने जन्मदिन के अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं। और इसी के साथ कार्यक्रम चल रहा है छायालोक के अंतर्गत यादों की बारात। रविवार की शाम है, साथ ही साथ खूबसूरत मौसम यानी कि बरसात का भीगा भीगा मौसम है। तो ऐसे में एक प्यारा सा गीत हो जाए, है ना,

इसी के साथ करते हैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त, और यही वादा रहा आप सभी से कि अगले महीने इसी जगह इसी चैनल पर दोबारा बात होगी, ढेर सारे फिल्मी गीत और फिल्मी कहानियों को लेकर हाजिर हो जाएगी आपकी ये रेडियो दोस्त शर्मिशा। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, ट्यून रहेगा 107 FM रेनबो के साथ। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे।

0: FM Rainbow-তে তিনে কে তিন, তিনে কে তিন, গানের হ্যাট্রিক, গানের হ্যাট্রিক।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: कहिए, क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?